0: 98.5 2 000 FM
1: क्या आप ऐसे काम की खोज में हैं जो आपको बहुत कुछ दे सके? ज्यादा जोश, ज्यादा ठोस काम, ऐसा काम जिससे आप अपने स्थानीय समुदाय में बदलाव ला सकें। पुलिस रिक्रूट्स सर्च करें। NSW पुलिस फोर्स, हमारा काम बहुत मायने रखता है।
2: 2000 स्टेशन स्पॉन्सर।
3: Radio 2098.5 FM Community Program
4: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM
3: Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements.
4: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाचार विचार संगीत और सामाजिक सूचनाएं
3: रेडियो 2098.5 FM मल्टीकल्चरल रेडियो
5: आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया 13 अगस्त 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा, प्रदीप उपाध्याय और अजय गुप्ता का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। ब्रिक्स समिट से पहले चिदंबरम का बड़ा सवाल, पिछले 2-3 सम्मेलनों से भारत को क्या मिला? भारत पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, पीएम मोदी से अहम मुलाकात। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम मोदी से पुतिन की मुलाकात। जाने कड़े वैश्विक दबाव के बीच कितनी मजबूत है भारत रूस की दोस्ती। एफएएस की रिपोर्ट देख सो नहीं पाएगा पाकिस्तान। भारत के पास करीब 190 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने का अनुमान। 7 साल बाद भारत आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मोदी से होगी महा बैठक। रेल यात्रियों को क्या फायदा होगा, 7 हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क को 4 लेन करने की मिली मंजूरी। दुर्गा पूजा में नॉनवेज पर बागेश्वर बाबा की अपील से बवाल, बंगाल बीजेपी बोली बंगाली मछली कैसे छोड़ सकते हैं। अब सुनिए समाचार विस्तार से। भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयानों ने सियासी बहस तेज कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ब्रिक्स समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि पिछले 2 या 3 ब्रिक्स सम्मेलनों से कोई ठोस लाभ या ठोस परिणाम सामने आए हैं। वास्तव में हम ब्रिक्स का हिस्सा हैं, SCO का हिस्सा हैं, G20 का हिस्सा हैं और क्वाड का भी हिस्सा हैं। इनसे हमें क्या लाभ मिल रहा है, मुझे नज़र नहीं आता। वहीं सलमान खुर्शीद ने चिदंबरम की बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत बताई, जबकि शशि थरूर ने ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मंच करार दिया। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियन ब्रिक्स समिट 2026 में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे। समिट से पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं की बातचीत पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत यात्रा पर रवाना होने से पहले ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि नए ब्रिक्स बैंक का गठन देशों को डॉलर पर निर्भरता से मुक्त करने और दुनिया में अमेरिका के प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास का मुकाबला करने के लिए किया गया था। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक से एक बार फिर दुनिया की निगाहें भारत रूस के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों पर टिक गई है। पश्चिम के भारी दबाव और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद दोनों देशों की यह दोस्ती कड़े इम्तिहान से गुजरते हुए आज भी मजबूत बनी हुई है। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष ऊर्जा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का लंबा सहयोग है। भारत की सैन्य ताकत बनाने में रूस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। सुखोई लड़ाकू विमान, T-90 टैंक, मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर और परमाणु पनडुब्बियों से लेकर ब्रह्मोस जैसी संयुक्त परियोजनाओं तक रक्षा सहयोग फैला हुआ है। अब बातचीत का दायरा पांचवीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान, परमाणु ऊर्जा और नई रक्षा तकनीकी तक पहुंच रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ने वाली है। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका की गैर लाभकारी संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS के अनुमान के मुताबिक भारत के पास करीब 190 परमाणु हथियार हो सकते हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के बेड़े के जरिए भारत समुद्र में अपना न्यूक्लियर कवच बना रहा है। रिपोर्ट का कहना है कि भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों और उन्हें ले जाने वाले सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। पालम एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड होते ही वैश्विक कूटनीति का पारा चढ़ गया है। साल 2020 की गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों देशों के बीच उपजे तनाव के साए के बीच जिनपिंग का ये पहला भारत दौरा है। इससे पहले वह आखिरी बार 2019 में भारत आए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स मंच पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा विकास, सुरक्षा और बदलती विश्व व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दो दिग्गज नेताओं की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई हैं। कजान और तियानजिन के बाद ये लगातार तीसरा साल होगा जब दोनों नेता आमने सामने मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के 7 हाई डेंसिटी रेलवे नेटवर्क को 4 लेन करने की मंजूरी दे दी। इसमें दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता और कोलकाता दिल्ली जैसे देश के प्रमुख रेल मार्ग शामिल हैं। सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क की लाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होने के साथ भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सर्विस रिलायबिलिटी में भी सुधार होगा। बागेश्वर बाबा के नाम से लोकप्रिय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हावड़ा जिले के लिलुआ में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं से शाकाहारी भोजन करने की अपील की थी। इस पर बवाल मच गया। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री का नाम लिए बिना उस अपील को खारिज कर दिया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कृपया बुरा मत मानिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की एक बात मुझे पसंद नहीं है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों के पास नॉनवेज खाना खाया जाता है। इस पर भाजपा नेता भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाली मछली और मांस कैसे नहीं खा सकते। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि माँ काली को मटन चढ़ाया जाएगा। अगर कोई विवेकानंद से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो यह उनकी अपनी निजी राय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कि यह फ्रेट कॉरिडोर एक और वजह से कमाल का है। हाल ही में जेएनपीटी पोर्ट मुंबई से वडोदरा तक डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन किया गया है। इस मालगाड़ी के चलने से एक बार में ही 250 से अधिक ट्रकों के बराबर का सामान मुंबई से वडोदरा चला आया। अब ये जो नाराज फूफा जी हैं वो चिल्लाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं विकसित भारत की यात्रा को और गति देने के लिए आपके बीच आया हूँ। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,54,410 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 95.60 रुपये और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 68.52 रुपये। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं अजय गुप्ता और मैं संजीव शर्मा, और हर सप्ताह की तरह आपके लिए लाए हैं कुछ मिले जुले गीत, कुछ सामाजिक सूचनाएं। और अजय, आप क्या लेके आए हैं आज?
6: श्रोताओं नमस्कार। हम हर बार की तरह आपके लिए मनोरंजन भी लाते हैं और थोड़ी ज्ञान की चीज़ें भी लेके आते हैं। तो आज हमारे पास एक दो साक्षात्कार हैं। पहला है सिडनी की जानी मानी रंगमंच की निर्देशिका ज्योत्सना ज्योति जी से, जो एक अपना नया नाटक लेके आ रही हैं दशोरंग के नाम से। तभी उनसे बात करवाएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अचिन जैन। अचिन जी, आपका स्वागत है। अचिन जी बड़े बहुमुखी हैं, उन्होंने स्विट्जरलैंड में ज्यूरिच से पीएचडी करी है, और उसके बाद में वो बोस्टन में कई दिन काम किया, और हमारा सौभाग्य कि सिडनी में आए। और उनके जो प्रोफेशनल है चीज़ें, उससे तो ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा हो ही रहा है, और हमारे स्टूडियो को आज बड़ा फ़ायदा होएगा उनसे चर्चा करके।
5: तो श्रोताओं, अब समय होता है प्रभु वंदना का, पर उससे पहले सुनते हैं आज का विचार। कहा जाता है कि अनुभव वो स्कूल है जहां फीस बहुत भारी चुकानी पड़ती है, लेकिन सीख सबसे बेहतरीन मिलती है। जीवन में असफलताएं और मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें अंदर से मजबूत बनाने आती हैं। आज का सच यह है कि ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने या डिग्रियां हासिल करने से नहीं आता, बल्कि ठोकरें खाने के बाद संभलने और हर रोज कुछ नया सीखने के दृष्टिकोण से बनता है। इसलिए अपनी गलतियों से डरिए मत, उन्हें अपना गुरु बनाइए। याद रखिए, सूरज हर रोज डूबता है ताकि अगली सुबह वो और अधिक चमक के साथ उठ सके। आपका आज का प्रयास ही आपके कल का सबसे मजबूत आधार है। तो श्रोताओं, आज जो भजन लाए हैं वो नई फिल्म हनुमान अंश से लिया गया है, और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा।

0: श्रोताओं कुछ तकनीकी वजह से ये भजन आपको नहीं सुना पा रहा हूँ अभी दो मिनट में फिर आपको सुनाएंगे
1: तो जैसा मैंने बताया था कि जो हमारे साथ अचिन जैन जी हैं जो आज सबसे बड़ा टॉपिक होता है सोलर एनर्जी का सौर ऊर्जा का और इतना प्रचलित हो गया है कि सूरज की रोशनी को हम कैद कर लेते हैं और उससे अपने रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं और अब तो ये भी हो गया कि उसको कैद करके बैटरी में स्टोर कर लें और धीरे धीरे अपने मन से उपयोग करें तभी नहीं जब हम मतलब सूरज सूर्य देवता की कृपा होती है तो अचिन जैन जी हैं यहाँ पे और उनसे हम बात करेंगे मतलब काफ़ी सारे मुद्दों पर तो अचिन जी आप जो सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको तो हमने मुट्ठी में अभी दबाया है तो उसके पहले जो सूर्य देवता की कृपा होती थी वो ऊर्जा वो कहाँ जाती थी आपको क्या लगता है
0: तो अजय भजन तैयार हो गया पहले भजन सुन लें फिर उसके बाद बात करते हैं ठीक है

0: तो श्रोताओं, ये भजन हमने लिया था नई फिल्म हनुमान अंश से। और अपने सुनने वालों को ये भी बता दें कि अब ये फिल्म आप आराम से देख सकते हैं, काफ़ी सिनेमा हॉल्स में लग रही है और काफ़ी शोज़ हो रहे हैं। जी हाँ, ये नीव करौरी बाबा के ऊपर आधारित फिल्म है और हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है और आशा करता हूँ यहाँ पे भी सबको बहुत पसंद आएगी।
1: संजीव, इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि जब ये बनी थी
0: जी,
1: काफ़ी लो बजट पे बनी थी,
0: 2 करोड़ में।
1: हाँ, और उसके बाद में पहले दूसरे हफ्ते भी ऐसे ही ठीक रही, तीसरे हफ्ते में सोच रहे थे कि ये शायद ख़त्म हो जाएगी
0: जी,
1: और तीसरे हफ्ते से जो पिकअप किया है लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से
0: जी,
1: वो मतलब अभी बहुत पसंद की जा रही है और सुपरहिट मूवी निकली है।
0: हम सुन रहे हैं कि 160-170 करोड़
1: हाँ
0: जो है पार कर चुकी है।
1: तो भारत के लोगों के भी टेस्ट जो है, कि भारत की भारतीय कह लीजिए, बाहर के बाहर बहुत मतलब मेच्योर हो रहे हैं कि एक ही ढर्रे पे नहीं है कि वही चाहिए उनको बार बार बॉलीवुड सॉन्ग्स और उसी पे मतलब।
0: और
1: नहीं है,
0: मैंने अजय देखी नहीं है फिल्म, बट मुझे ये ऐसा लगता है कि वो बड़ी बड़ी फिल्में मार धूम धाम, अब ये एक एकदम से सिंपल सी फिल्म आई है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल से कोई भी कोई बड़ा स्टार नहीं है, कर नथिंग। तो धीरे धीरे एक कोने में
1: रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग चाहिए।
0: यस यस, तो वो है। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और बातचीत करते हैं।
1: तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे स्टूडियो में है अचिंत जैन, जो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। अचिंत जी,
2: जी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस शो पे न्योता देने के लिए। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आप सबसे इस माध्यम के थ्रू बात कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा, तो जैसे अजय जी ने बताया, मैंने ETH ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड से PhD करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मेरा फोकस था सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें मैंने सोलर सेल्स और फोटोवोल्टाइक सेल्स पे भी काम करा है। और अभी कुछ सालों से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, ऑस्ट्रेलियन एनर्जी मार्केट कमीशन, वहाँ पे काम करता हूँ पॉलिसी एडवाइज़र की तरह। तो हमारा जो यहाँ पे काम है, हम लोग सरकार को, फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को सौर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जीज, विंड, सोलर, इन सब पे पॉलिसी की सलाह देते हैं। और हम लोग ऑस्ट्रेलिया के जो एनर्जी मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी और गैस मार्केट्स, उसके रूल्स बनाते हैं।
1: हाँ, तो आप मूल रूप से भारत में कहाँ से हैं और आपने वहाँ क्या किया था?
2: मैं भारत में हूँ मेरठ, उत्तर प्रदेश से, और मैंने वहाँ पे अपनी पूरी पढ़ाई स्कूलिंग वहीं से करी है। और उसके बाद मैंने BTech करा था IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में।
1: तो आज आपसे बहुत सारी बातें होंगी सौर ऊर्जा के बारे में और भी मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे बैटरियाँ हो गई, EV हो गई। तो संजीव जी, एक गाना सुना रहे हैं, अच्छा सा।
0: बिल्कुल, गाना सुना रहे हैं। और श्रोताओं, आज हम लाए हैं सारे गीत SP बाला सुब्रमण्यम के गाए हुए। और आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गीत गाए हैं। और अजय, आपको उनका पूरा नाम मालूम है? SP बाला सुब्रमण्यम,
1: बहुत लंबा चौड़ा होगा।
0: जी, तो उनका पूरा नाम है श्रीपति पंडितरा धुला, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली, बाला सुब्रमण्यम, यानी हमारे अपने SPB। उन्होंने अपने शानदार करियर में 16 से अधिक भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। ये कोई आम बात नहीं है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान इनके नाम दर्ज है, तो 16 भाषाओं में। हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए उनकी आवाज़ एक अमूल्य तोहफा थी। फिल्म मैंने प्यार किया का वो गाना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, आज भी जब कानों में पड़ता है तो 90 के दशक की वो सुनहरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए, उनका जो है, उनके ही आज सारे गाने मैं लेके आया हूँ, तो सुनते हैं पहला गाना।

0: तो अच्छन जी अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं
1: जी।
0: तो आपने सोलार के ऊपर काम किया है, सभी कंडक्टर्स पे काम किया है, दोनों ही काफ़ी जो है चर्चा में रहे हैं विषय
1: जी।
0: तो बेसिकली हमें समझाइए कि जो है ये सूरज की जो ऊर्जा है ये कैसे कैप्चर होती है
1: जी। तो ये है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो सेमीकंडक्टर होते हैं जब उस पर सूरज की ऊर्जा पड़ती है तो वो उससे बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और ये इफेक्ट वैसे तो बहुत पुराना है, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1839 में, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एडमंड बेकरल, तब उन्होंने ये डिस्कवर करा था। इसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, जिसमें एक फोटोन पड़ा और वोल्टेज बनी, बहुत सिंपल है। बट तब जो सोलर सेल्स थी उनकी एफिशिएंसी बहुत ही कम थी, तो इसलिए वो प्रैक्टिकली उनका कोई इस्तेमाल हो नहीं सकता था। तो इन पर 200 साल से लगभग रिसर्च चल रही है। इसका सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू हुआ वो इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। UNSW के प्रोफेसर मार्टिन ग्रीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा एफिशिएंसी का। उन्होंने एक नई टेक्निक बनाई जिससे सोलर सेल की एफिशिएंसी 18% तक उन्होंने शो करा।
0: ये कब की बात है?
1: ये बात है 1983 की, 1983, आज से लगभग 40 साल पहले उन्होंने ये डिस्कवरी करी। और दुनिया में जितनी भी सोलर सेल आज बनती हैं वो सारी उसी तकनीक से बनती हैं जो प्रोफेसर मार्टिन ग्रीन ने UNSW में दिखाई।
0: तो फिर उसके बाद में उसकी एफिशिएंसी और बढ़ी?
1: हाँ, अब धीरे धीरे धीरे और थोड़ी बढ़ रही है, पर अभी भी 20-25% के बीच में इसकी रहती है एफिशिएंसी।
0: अच्छा।
1: जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ एफिशिएंसी का क्या मतलब है। एफिशिएंसी से हमारा मतलब है कि सोलर सेल पे जितनी सूरज की ऊर्जा पड़ रही है उसमें से कितने प्रतिशत हम उसको बिजली में बदल सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो 20% का मतलब है कि 100 में से 20 सिर्फ जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है।
0: तो मैंने एक सवाल पूछा था, बड़ा ही मतलब ले सवाल है, कि अगर हम उसको कैप्चर कर

0: लेते हैं और उसको यूज करते हैं किसी भी चीजों के लिए अगर नहीं यूज करते तो फिर कहां जाती है ऊर्जा और जो नहीं कर पाते वो कहां जाती है तो मतलब इसी धरती को उसका टेंपरेचर बढ़ाती है तो इसके तरीके से तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट करती है वो और उसको हम कम कर रहे हैं
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं कि देखिए सूरज तो क्या है सूरज की ऊर्जा तो पूरे सोलर सिस्टम में पूरे यूनिवर्स में सब तरफ जा रही है इतने सारे स्टार्स हैं उनकी जो एनर्जी है लाइट है वो सब तरफ जा रही है
0: जी
1: और जो सूरज की जो ऊर्जा जो अर्थ पे पड़ रही है तो बहुत ही थोड़ी सी है वो तो लाइक 1% से भी कम है और वो भी ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती है रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है कुछ क्लाउड से कभी रुक जाती है या ओजोन लेयर से ट्रैप होती है बट ज़्यादातर सूर्य की ऊर्जा हमारी चली जाती है
2: बट वो ऊर्जा रुक जाती है इसीलिए शायद हम लोग जीवित हैं मतलब अगर पूरी ऊर्जा आने लग जाए तो शायद ये पृथ्वी पे जीवन ही ना रहे
1: बिल्कुल सही बात है हाँ तो अब जैसे जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये सूरज की ऊर्जा से ही चलते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं सूरज की ऊर्जा से ही वो फल बनाते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है और ग्लोबल वार्मिंग की जो हम पहले बात करते थे कि जो ओजोन लेयर है ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि उस वजह से भी हमारे जो है एक्सेस यूवी ट्रैप हो जाती है
0: जी तो हमने तो एक फिजिकल फॉर्म में उसको कैप्चर किया है तो प्रोसेस चाहे अलग हो तो उस ऊर्जा को कैप्चर करने का जो पेड़ पौधे हैं वो भी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं तो सेल में भी वो प्रोसेस होता है पर थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग होगा
1: जी
0: उसी उसी के बेसिस पे होता है सोलर
1: फोटोसिंथेसिस बहुत अलग प्रोसेस है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है और जो सेल्स में होता है वो थोड़ा फिजिकल फिजिक्स और उसमें सेमीकंडक्टर्स के थ्रू होता है
0: तो अब ये टेक्नोलॉजी मतलब काफ़ी पॉपुलर हो गई है
1: जी
0: और सभी जगह उसका मतलब प्रयोग हो रहा है
1: जी
0: और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज आजकल सोलर से प्रोड्यूस हो रहा है जो जो भी अलग पावर है तो अभी तक कितना पेनिट्रेशन हो पाया है मतलब कितना
1: जी जी तो इनफैक्ट अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सोलर काफ़ी हाई पेनिट्रेशन ऑस्ट्रेलिया अगर हम सिर्फ घरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड की हाईएस्ट है सोलर पेनिट्रेशन मतलब कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40% घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट है अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो और इस समय लगभग 30 GW तक कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है ऑस्ट्रेलिया में घरों में सोलर पैनल की और ओवरऑल ग्रिड में इससे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ग्रिड में हमारे विंड भी है सोलर के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में
0: तो मतलब एक तो घरों के ऊपर सोलर लगते हैं जो पैनल लगाए जाते हैं फिर ऊपर से कई सारे सोलर फार्म भी हैं जो कि खाली मतलब इसी के लिए लगाए जाते हैं जो वो भी जो है मतलब देश विदेश सब जगह पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में भी कहते हैं कि बड़े बड़े जैसे राजस्थान में मरुभूमि है वहाँ पर लगाए जाते हैं और कहीं तो मैंने ये भी सुना है कि जो तो केनाल वगैरह होते हैं तो उसको एवापरेशन रोकने के लिए ऊपर ये लगा देते हैं और ऊपर से सोलर लगा दिया तो जैसे कि बिजली भी बन रही है
1: जी जी जी तो सोलर बेसिकली आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं अब सोलर इतना चीप हो गया है कि उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं चैलेंज इसमें ये है जो मुद्दा आता है ट्रांसमिशन का कि सोलर आपने जैसे रेगिस्तान में लगा तो दिया पर उसको वहाँ पे इस्तेमाल करने वाला तो कोई है नहीं उस बिजली को
2: लेके आना
1: उसको शहरों तक लाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल लाइन्स डालनी पड़ेंगी वो कॉस्ट उसकी कॉस्ट होती
0: अच्छा,
1: है
0: और उसमें थोड़ा सा लॉस भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का
1: थोड़ा सा लॉस होता है पर सबसे बड़ा चैलेंज कॉस्ट का है और ऑस्ट्रेलिया में इस समय यही दिक्कत है कि ऑस्ट्रेलिया में
2: बैटरी यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना सब घरों को यू नो इंडिपेंडेंट यूनिट स्मॉल
1: जी जी
2: एक और मैंने चैलेंज जो अजय सुना था कि आपने बिजली ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इस दिन इतनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से इन्होंने बिजली बना ली अब उस दिन बरसात हो गई तो अब वो जो एक्सेस बिजली बन गई है आप कहीं रख तो सकते नहीं
0: चैलेंज होता होगा वो
2: तो ये जो सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी ये लोग आपने कई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो घरों की बैटरीज हैं उनको एज अ वर्चुअल पावर हाउस यूज़ करती हैं तो जब एक्सेस बन गई तो वो सारी बैटरी में स्टोर हो जाएगी और जब उनको एकदम से मान लीजिए कभी ज़रूरत ज़्यादा हो गई तो वो उन बैटरियों से ले लेते हैं
0: प्रेग्नेंट बन गया है
2: कई जगह तो ये लोग क्या करते हैं कि पानी को पंप कर देते हैं ऊपर हाइट पे कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उससे उन्होंने पंप कर दिया और वो लाइक एस पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे स्टोर्ड है और जब एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत हुई वो पानी छोड़ के फिर टर्बाइन चला के जनरेट कर लेते हैं तो काफ़ी टेक्नोलॉजी है उसमें
0: पर अजय जी ये जो टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही है میں نے سنا کہ سولار پینل جو ہے پرانے جو ہوتے تھے کچھ سال ان کی لائف ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں زیادہ افیشینٹ آتے تھے ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا پرانے چلتے رہتے ہیں جب تک ان کی لائف ختم ہو جائے
1: جی تو سولر جو سسٹمز ہیں ان کی آج کی ڈیٹ میں 25 سے 30 سال کا لائف اسپین ہے تو اوور ٹائم ان کی ایفیشینسی ڈیگریڈ ہوتی ہے جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ نارملی اس پہ تھوڑی ڈسٹ وغیرہ کی وہ تو کلیننگ کرنی پڑتی ہے پر جو سیل بھی ہے اس کے اندر مائکرو کریکس آنے لگتے ہیں ڈیفیکٹس آنے لگتے ہیں تو دھیرے دھیرے ایفیشنسی کم ہوتی ہے پر 25 سے 30 سال تک آپ کا ایک سسٹم
0: اور ایک پریکٹیکل سوال پوچھوں گا جیسے آپ نے سولار پینل لگا دیے 20 لگا دیے سمجھ لیجیے
1: جی
0: تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سب کے ایک سے ساتھ نہیں پھونکیں گے کبھی دو چار بیچ میں فیل ہو جائیں تو ہاں جب بیچ لگایا آپ نے
1: ریلائبلٹی کافی اچھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سی برانڈ
0: ہاں مطلب ان دو چار کو ریپلیس کرنا پڑتا ہوگا پھر
1: وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ڈیمیج کبھی کبھی ڈیمیج ہو گیا ہیل سے ڈیمیج ہو گیا کچھ اس طریقے سے
2: تو شروتاؤں آئیے ایک ہمارے اسپانسر کا سندیش سن لیتے ہیں

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. चलिए SP बालासुब्रमण्यम द्वारा गाया हुआ एक और बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं.

0: looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of The Open Radio.
1: श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर दर्पण रेडियो का संदेश।
2: तो श्रोताओं, हम अचिन जी से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच में मैं आपसे बात करवा रहा हूँ सिडनी की जानी मानी रंगमंच की निर्देशिका ज्योत्सना ज्योति जी से। इनकी खासियत ये है कि इनमें इतनी एनर्जी है, एक हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इनके खुद की इतनी एनर्जी है कि हर साल जो हम एक सिडनी वासियों को नया नाटक देती हैं, और इतने अच्छे नाटक होते हैं इनके। 10 साल से ये नाटक दे रही हैं, हर साल लगभग एक नाटक आता है इनका, और इस बार नाटक कर रही हैं अपने 10वीं वर्षगांठ पर, जिसका नाम रखा है दशोरंग। तो सौभाग्य है कि ज्योत्सना जी हमारे साथ बनी है। ज्योत्सना जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दर्पण रेडियो दर्पण में शामिल करने के लिए। और जैसे कि आपने बताया ही दर्शकों को कि इस साल हमारे थिएटर ग्रुप जिसका नाम है विविधा आर्ट्स, उसकी 10वीं वर्षगांठ है, तो ये बहुत ही स्पेशल है। और इसलिए मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस रेडियो दर्पण के कार्यक्रम में आपने मुझे शामिल किया है।
2: तो श्रोता जानना चाहते हैं कि इस बार उनको क्या देखने को मिलेगा।
3: तो अजय जी, जैसे क्योंकि दशोरंग एक नाम बस मुझे सूझ गया, क्योंकि एक तो 10वीं वर्षगांठ है और मैं चाह रही थी, क्योंकि रंगमंच है, रंगमंच के बहुत सारे रंग होते हैं, तो बहुत सारे रंग उसमें शामिल करने की कोशिश थी। तो वर्षगांठ तो सभी मनाई जाती है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस की, ग्रुप्स की, लेकिन क्योंकि ये एक रंगमंच की वर्षगांठ है, थिएटर ग्रुप की वर्षगांठ है, तो इसमें थिएटर होना जरूरी था, कुछ नाटक, कुछ कुछ मंचित करना। तो इसलिए हमने सोचा कि मैंने ये सोचा कि कुछ थिएटर के जो डिफरेंट कलर्स हैं और उनको उनका पर्पस क्या है, कि ज्यादातर थिएटर सिर्फ एक कहानी नहीं है, थिएटर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उसमें एक तो बहुत कहानियां देखने को मिलती हैं, जिंदगी के बहुत सारे मूड्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जॉनरा होते हैं कहानियों के, और सबसे बड़ी बात यह है कि थिएटर में दर्शकों और कलाकारों का एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, जो कि फिल्म में नहीं होता है। फिल्म
2: वो सबसे बड़ी बात वो है
3: जी।
2: तो दोनों के कलाकारों के लिए भी है और जो ऑडियंस है उसके लिए भी है, जो आप लाइव थिएटर आप वहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं
3: जी। इसीलिए, क्योंकि फिल्में देखिए कोई 100-150 साल, कितने अभी 150 साल नहीं हुए से बनना शुरू हुई, और थिएटर तो हजारों सालों का एक माध्यम है, किसी अलग अलग रूप में चलता था और इसीलिए अभी तक जीवित है, और इसीलिए लोगों को जो एक उसमें आनंद मिलता है वो फिल्मों से अलग है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट है एकदम मिलता है एनर्जी ऑडियंस को और कलाकारों को आपस में, तो वो एक, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स वी लाइक कनेक्शंस,
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: हमें कनेक्शन अच्छा लगता है।
2: तो इस बार आप एक नया नाटक लेके आई हैं, नाम है दशोरंग, उसके बारे में बताइए कि कितने शो हो रहे हैं इसके।
3: जी, दशोरंग के 3 शो हो रहे हैं। सबसे पहला शो कैनबरा में हो रहा है अगले शनिवार को, 19 सितंबर को शाम 3 से 5 बजे, और वो शो जो है वो और भी हमारे लिए विशेष है, स्पेशल है, क्योंकि वो शो भारतीय उच्चायुक्त, इंडियन हाई कमीशन के बैनर के अंदर हो रहा है, और वहां पे हम ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं ये नाटक, क्योंकि हिंदी दिवस इस बार सोमवार को पड़ रहा है, तो किसी वो वीकेंड पे ही करना था हमको, तो इसलिए हमें 19 सितंबर का हमें मौका मिला, और भारतीय उच्चायुक्त के साथ मिलके हम कर रहे हैं, और उनकी हमें मतलब उन्हीं के बैनर के नीचे है ये, तो ये हमारे लिए बहुत ही खास है। और क्योंकि ये नाटक हिंदी में है, और विविधा आर्ट्स की स्थापना भी इसी उद्देश्य से हुई थी, क्योंकि कैनबरा में कोई हिंदी थिएटर नहीं था उस समय, जिस समय मैंने ये शुरू किया विविधा आर्ट्स, तो यही बातचीत हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है रेडियो मनपसंद का कैनबरा का जो रेडियो है
2: जी
3: तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया और ये हिंदी और आज बहुत ही खुशी हो रही है इस बात पे कि 10वीं वर्षगांठ हम हिंदी दिवस पे ही कर रहे हैं और इंडियन हाई कमीशन के साथ कर रहे हैं
2: हिंदी दिवस पे लोगों को नाटक देखने को मिलता है और अच्छी अच्छी बात क्या हो सकती है
3: जी
2: अच्छा और शो सिडनी में भी है
3: जी और सिडनी में दो शो हो रहे हैं 26 सितंबर को तो अगले से अगला शनिवार तो जैसे कैनबरा के बाद सिडनी में दो शो हैं वो शो हो रहे हैं नोएडा में द प्ले हाउस थिएटर तो नोएडा में एक प्ले करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि चलो 10वीं वर्षगांठ हमारे लिए यादगार है उससे पहले हम कई थिएटर्स में प्लेस कर चुके हैं लेकिन इस बार द प्ले हाउस थिएटर में है और एक शो है 2 बजे जो 2 से 5 मतलब फुल शो जो नाटक है वो मैक्सिमम 1.5 घंटे का है
2: जी
3: सवा घंटे से 1.5 घंटे के बीच में और बस फिर उसके बाद मतलब जैसे लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो पहला शो है समझे 2 से 4:30 और फिर उसके बाद दूसरा शो है 6 बजे से 7:30
2: तो लोग टिकट लेना चाहें तो कैसे मतलब ले सकते हैं गूगल पे सर्च करें
3: जी जी बिल्कुल गूगल पे भी है क्योंकि वो टिकट उनकी वो कर रहे हैं जो
2: डिस्ट्रीब्यूशन
3: टिकटिंग है उनके उनके जरिए है उनके माध्यम से है तो अगर लोग सिर्फ टिकट एक भी उसमें टाइप करेंगे गूगल में तो उनको हमारा पोस्टर टिकट लिंक वहां पे मिल जाएगा वैसे हमारे सभी साथी कलाकार जो हैं वो सोशल मीडिया पे हैं अगर कोई जानकारी हो कोई रेडियो दर्पण को भी फोन करके अगर नंबर लेना चाहें तो मुझे आई एम श्योर कि हम उनको जानकारी दे सकते हैं टिकट के बारे में
2: अच्छा तो ज्योत्सना जी थोड़ा सा हमें एक एक रहस्य बना हुआ है कि क्या देखने को मिलेगा पर एक एक रेखा चित्र हमें बताइए कि जो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दर्शक
3: जी मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बिना कहानी बताए क्योंकि एक कहानी तो है क्योंकि नाटक तो एक कहानी ही है ना
2: जी
3: एक कहानी को बताना
2: जी
3: तो नाटक उस कहानी में लोग दर्शकों को बहुत सारी इमोशंस बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हंसी कुछ मतलब मेरा एक वो रहता है कि मनोरंजन तो होना ही चाहिए क्योंकि लोग अपने घर से आए हैं अपना कीमती समय निकाल के वो आए हैं तो उनको उस समय जो उन्होंने बिताया है उसमें उनको फुल एंजॉयमेंट उनको मजा आना चाहिए आनंद आना चाहिए और आनंद के साथ साथ कोई पर्पस भी है क्योंकि वो भी मेरा एक हर मेरी हर कहानी का कुछ देयर इज सम मैसेज कुछ उसके अंदर उद्देश्य भी होता है तो बस वो सब कुछ मिला के समझिए कि हमने एक जैसे बुना है एक कई रंगों और कई धागों के साथ मिलके एक ऐसी कहानी बुनी है जिसमें लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे
2: और ये नाटक नाटक हिंदी में है
3: जी ये नाटक हिंदी में है
2: जी अच्छा मैं इंडिया से हम लोग आते हैं इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में और साथ में अपना टैलेंट लेके आते हैं कुछ ना कुछ
3: जी
2: तो नाटक का भी अभिनय का भी टैलेंट है और टैलेंट को वीजा नहीं लगता आदमी को वीजा लगता है
3: जी जी जी बिल्कुल
2: हाँ तो ये टैलेंट जगह जगह बिखरता है तो इसमें जो आपके कलाकार हैं कुछ लोग सिडनी से भी हैं कुछ कैनबरा से भी हैं
3: जी जी जी बिल्कुल हाँ। ये बहुत बड़ी बात है और मैं वाकई बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि आप तो खुद एक कलाकार हैं अजय जी आप इस नाटक में स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका एक बहुत ही डिफरेंट रूप देखने को मिलेगा लोगों को एक चैलेंजिंग रोल है मैं समझती हूँ कि काफी डिफरेंट है जो अभी आपने आप अब तक पहले आपने किए हैं तो आप खुद जान सकते हैं कि कितनी मेहनत और कितनी कमिटमेंट चाहिए
2: जी
3: तो सभी कलाकार इतनी मेहनत करते हैं और मतलब कैनबरा से रिहर्सल के लिए यहाँ आना सेम डे पे मतलब ऑलमोस्ट 8 घंटे की ड्राइव हो जाती है उनके लिए कि रस्ते में जस्ट थोड़ा रुके या कुछ भी तो 3.5 घंटे की तो सीधा ही ड्राइव है तो 7 घंटे 8 घंटे ड्राइव करके आना और फिर पूरी रिहर्सल में पूरी मेहनत करना
2: जी जी
3: कल हम लोगों ने 10 बजे से 4:30 बजे तक रिहर्सल किया तो ये बहुत बड़ी बात है और इसमें जो मेहनत जो कलाकारों की है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो स्टेज पे आना चाहते हैं वो इसलिए आना चाहते हैं कि उनका एक पैशन है कनेक्शन के लिए ऑडियंस के लिए नहीं तो कई चीजें हैं आजकल करने के लिए तो ये अपने दर्शकों के लिए ही वो इतनी मेहनत करते हैं
2: तो दर्शकों हम आपको एक बार फिर बता दें दशो रंग जो नाटक हो रहा है वो विविधा आर्ट्स के बैनर में हो रहा है और इसके तीन शो हैं, एक शो है कैनबरा में वो है 19 तारीख को, और दो शो हैं सिडनी में वो हैं 26 को। स्थान है नाइडा सिडनी में, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस वेन्यू माना जाता है, और इसके टिकट के लिए आप टिकटक के थ्रू ले सकते हैं या आप गूगल कर सकते हैं टिकटक। तो जोशना जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने नया नाटक के लिए, और सिडनी वाले चाहेंगे कि आप हर साल इसी तरह नए नए नाटक लेके आएं और हमको मनोरंजन भी दें और हमारे थॉट्स को प्रवोक करें।
3: थैंक यू सो मच अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, और सभी लोगों से, सुनने वालों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज आइए, देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा शो होने वाला है, आप टिकट खरीदिए और प्लीज आइए।
2: और आज के कार्यक्रम में हम एक पहेली रन कर रहे हैं जिसके विजेता को दो टिकट मिलेंगे इस नाटक के।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ, तो पहेली क्या होनी चाहिए
3: योशना जी? मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो हम यही पूछ सकते हैं कि ये जो विविधा, जो आर्ट्स का जो नाटक हो रहा है दशरंग, ये विविधा का कौन सा साल है?
2: हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये
3: जी।
2: तो दर्शकगण ये नोट कर लें कि अगर आप इस सवाल का उत्तर दे सकें कि विविधा आर्ट्स कितने साल से यहाँ पे सक्रिय है सिडनी में, ये कौन सा साल है उनका
3: जी।
2: और अभी तक को दो मिलेंगे दो टिकट इतना रख के। बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद जोशना जी आपको, और बहुत शुभकामनाएं।
3: थैंक यू सो मच
2: जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक
1: यू। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि आज हम सारे गीत लेके आए हैं SP बाला सुब्रमण्यम के, और उनके बारे में एक आपको सुंदर सा किस्सा बताता हूँ। साल 1981 में जब निर्देशक के बालचंदर फिल्म एक दूजे के लिए बना रहे थे, तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि दक्षिण भारतीय नायक जो कि कमल हासन थे, उनके लिए कोई हिंदी गायक से गाना गवाया जाए। लेकिन बालचंदर साहब अड़ गए कि SPB ही गाएंगे, यानी SP बाला सुब्रमण्यम ही गाएंगे, ताकि किरदार में दक्षिण भारतीय लहजा जो है स्वाभाविक लगे। SPB सर काफ़ी हिचकिचा रहे थे। उसी दौरान स्टूडियो में महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब भी मौजूद थे। जब रफ़ी साहब ने SPB को घबराते हुए देखा, तो उन्होंने SPB के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत सुरीला गाते हो, बस बिना किसी डर के अपने स्वाभाविक आवाज़ में गाओ। रफ़ी साहब के इस आशीर्वाद ने चमत्कार कर दिया। फिल्म का गाना तेरे मेरे बीच में सुपरहिट रहा, और अपने पहले ही हिंदी गाने के लिए SP बाला सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो आइए सुनते हैं वही खूबसूरत गीत।

0: श्रोताओं, ये गीत था फिल्म एक दूजे के लिए, बहुत ही हिट फिल्म थी और आशा करता हूँ ये गीत आपको पसंद आया होगा।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं अचिन जैन जी से। अचिन जी के से हम सौर ऊर्जा के बारे में खास तौर पे बात कर रहे हैं। तो अचिन, एक शब्द सुनने में आता है सेमीकंडक्टर
2: जी,
1: जो पॉपुलर है, तो शायद बहुत लोग उसका मतलब नहीं जानते
2: जी।
1: तो बताइए सेमीकंडक्टर होता क्या है
2: जी। तो सेमीकंडक्टर को अगर हम ब्रेक करें, सेमी और कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। जैसे मेटल है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, तो मेटल की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो कंडक्ट करता है बिजली को, पर थोड़ी रेजिस्टेंस के साथ करता है। सेमीकंडक्टर्स में एक खास बात ये होती है कि उनमें एक बैंड गैप होता है, जिसका बहुत सिंपल शब्द में हम बात करें तो, जब इस सोलर की हम बात करें तो वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जो मेटल है, मेटल ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर देता है सोलर एनर्जी को, सनलाइट को, मतलब सनलाइट को मेटल रिफ्लेक्ट करता है और सेमीकंडक्टर एब्जॉर्ब कर सकते हैं।
1: तो फिर सेमीकंडक्टर जो है, मतलब दुनिया के कुछ देश हैं जिनके पास मोनोपोली है बनाने की, मतलब ये कई वहाँ ज़्यादा बनते हैं, ताइवान में शायद ज़्यादा बनते हैं तुम्हें।
2: हाँ, ज़्यादातर जो सोलर पैनल्स की अगर हम बात करें, मेजॉरिटी चाइना में बनते हैं। प्रोसेसेस हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के, वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी ये सब चाइना में बनती है मोस्टली। और इनकी पैनल्स के बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सबसे जो कोर कॉम्पोनेंट हुआ है सिलिकन। सिलिकन का जो क्रिस्टल है बहुत प्योर होता है, तो इसकी प्योरिफिकेशन के लिए बहुत हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाहिए, जो ज़्यादातर चाइना के पास है। और प्योर सिलिकन हम बोलते हैं, सो सिंगल क्रिस्टल सिलिकन, सिलिकन एक सिंगल क्रिस्टल से हम सोलर के पैनल सेल्स बनाते हैं और फिर इनको असेंबल करते हैं पैनल्स में।
1: तो ये कैपेसिटी अभी शायद भारत में भी हो रही है, सोलर पैनल जो भारत में बनने शुरू हो गए हैं
2: जी। अब हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं भारत में ये सब असेंबली लाइन सेटअप करने की, जिसमें सोलर जो सेल्स हैं उनको पैनल्स में हम असेंबल कर सकें।
1: और सेमीकंडक्टर के बारे में भी काफ़ी जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सेमीकंडक्टर्स के भी प्रोडक्शन के लिए के बारे में
2: जी,
1: कि
2: जी।
1: भारत की अपनी खपत तो काफ़ी है और फिर निर्यात के लिए भी
2: जी,
1: बहुत
2: जी,
1: बड़ा मार्केट है दुनिया में।
2: तो इसमें दो चीज़ें हैं। सोलर, एक सेमीकंडक्टर्स हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप्स में, आपके टैबलेट्स में जो चिप्स होते हैं, जो जिसे हम जो प्रोसेसर, जो मेमोरी होते हैं, वो भी सिलिकन से बनते हैं। और जो आपकी सोलर सेल है वो भी सिलिकन से बनती है, पर इन दोनों के प्रोसेस बहुत अलग अलग हैं। पर ये दोनों मेजॉरिटी चाइना में बन रहे हैं, पर इंडिया में भी इनकी असेंबली फैसिलिटीज़ अब सेटअप हो रही हैं।
1: अच्छा, चलिए अब बात करते हैं बैटरीज के बारे में
2: जी।
1: तो हमने सौर ऊर्जा को कैप्चर कर लिया, मुट्ठी में ले लिया, तो फिर उसको तब के तभी तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, करते भी हैं काफ़ी कुछ
2: जी,
1: पर उसको बचा के भी रखते हैं
2: जी।
1: तो जैसे रात के लिए हो गया, या फिर कभी ऐसी हो कि जब सोलर एनर्जी कम है, तो अभी बैटरीज का प्रचलन काफ़ी हो गया है
2: जी,
1: तो कुछ उस पर प्रकाश डालिए आप
2: जी। तो आपने बहुत ये महत्वपूर्ण बात उठाई है बैटरीज़ की। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ हिस्ट्री में, तो जब ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने सोलर पैनल इंस्टॉल करने शुरू करे थे, उस समय काफ़ी ज़्यादा जो एक्सेस एनर्जी बनती थी वो आप ग्रिड में एक्सपोर्ट कर सकते थे, राइट। उस समय बैटरी नहीं होती थी, तो आपने दिन में धूप आई, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस ही, पर दिन में ज़्यादातर लोग घर पे नहीं होते हैं, या घर पे इतनी होते भी हैं तो इतनी उस समय बिजली को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो जो एक्सेस एनर्जी आप ग्रिड में एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको फीड इन टैरिफ जिसे हम बोलते हैं वो मिलता था। शुरू में 60 सेंट पर किलोवाट आवर मिलता था, फिर बीच में कम होकर 20-25 हो गया था, अब तो 4-5 सेंट ही रह गया है। पर अब क्या है, अब उस एक्सेस एनर्जी को आप ग्रिड में एक्सपोर्ट करने के बजाय आप उसको अपनी बैटरी में स्टोर कर सकते हो। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब रात के समय जब बिजली महंगी होती है और उस समय सोलर नहीं होता, तो उसको आप अपने घर को पूरा फिर बैटरी से चला सकते हो। तो इसलिए आप 24 घंटे दिन में सोलर और रात में बैटरी के बल पे अपने पूरे घर को पावर कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका बिजली का जो बिल है वो बहुत कम हो जाता है। जो डेली फिक्स चार्ज जो होता है, सप्लाई चार्ज $1 per day का, वो आपको देना पड़ता है, पर उसके अलावा डिपेंडिंग कि आपकी कितनी बड़ी बैटरी है और कितना बड़ा सोलर का सिस्टम है, आप ऑलमोस्ट ग्रिड से फ्री होके
1: पर सरकार भी चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा सोलर यूज करें
2: जी।
1: तो सोलर पैनल पर भी जो है काफी रिबेट दिया है सरकार ने और अब बैटरी पर भी रिबेट हो गया है।
2: अब जो अभी समय बहुत अच्छी स्कीम एक साल से चल रही है जिसको हम बोलते हैं चीपर होम बैटरी स्कीम जिसमें 30% तक आपको रिबेट मिलती है।
0: तो अजय अचिन से बात करते रहेंगे, एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं।

0: श्रोताओं आशा करता हूं कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। श्रोताओं आज एक गीत और जो है थोड़ा मेरे को याद आ रहा है, आइए जरा सा सुनवाता हूं आपको। ओ, नहीं चलिए कुछ गड़बड़ है। तो श्रोताओं आइए बातचीत करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं संजीव जी, और मेरा आपको धन्यवाद और अपने सभी दर्पण रेडियो के श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
0: हाँ तो प्रदीप जी एक पुराना गाना है, मैं सुना नहीं पाया, मैं ही गुनगुना देता हूँ कि हम छुपे रुस्तम हैं, हम छुपे रुस्तम हैं, छुपे रुस्तम हैं, कयामत की नजर रखते हैं, जमी तो क्या है आसमां की नजर रखते हैं। तो मैं तो ये जो गीत है आज आपके ऊपर एकदम चरितार्थ हो रहा है, तो मेरे मुझे लगा कि मैं अपने श्रोताओं को भी सुनाऊं। तो सुना है कि आपने एक बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ड्रॉन बैक। तो शॉर्ट में हमारे सुनने वालों को थोड़ा बताएंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है संजीव जी, जो कहानियां लिखी जाती हैं वो जन्म से मृत्यु के बीच की कहानियां होती हैं। पहले जन्म हुआ फिर मृत्यु हुई।
0: अच्छा,
1: मैंने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि मृत्यु के बाद जन्म तक की कहानी होनी चाहिए।
0: वाह,
1: तो ये सोचकर मैंने सोचा कि देखिए आपने सुना होगा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ हिप्नोसिस रिग्रेशन और लाइफ रिव्यू वगैरह वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, और वेदिक हिंदू फिलॉसफी, इन सब का कॉम्बिनेशन लेकर मैंने ये कहानी लिखी है। इस कहानी ऐसी है कि आदमी को हार्ट अटैक होता है, वो मर जाता है, फिर वो देखता है कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, फिर उसका लाइफ रिव्यू होता है। लाइफ रिव्यू होने में उसके साथ उसकी अंतरात्मा साथ रहती है जो उसे गाइड करती है कि देखो लाइफ रिव्यू होता है तो उसको सिर्फ अपनी फीलिंग ही नहीं याद आती है, जिसके साथ उसने जो एक्शन लिया है उसकी फीलिंग भी पता लगती है। तो इस कहानी में छोटी छोटी कहानियां हैं, जैसे कि वो सोचता है कि उसने कभी अपनी वाइफ को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, उसका क्या रिएक्शन हुआ, उसको कैसा लगा था।
0: तो इसीलिए मुझे लगता है जो हमारे यहाँ कर्मों के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए।
1: अच्छा, खास बात ये है कि इस कहानी के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक कर्मा क्या है, फॉरगिवनेस से क्या होता है, काइंडनेस से क्या होता है, जस्टिस क्या है, हु एम आई, सारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना उनको कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे कि ये हमारा जो हीरो है विवेक, ऑफिस से घर आता है, उसकी छोटी बेटी 7-8 साल की उस दौड़ती हुई आती है, उसके हाथ में एक ड्रॉइंग होती है, उसे दिखाती है, पापा देखो, उसे देखता है वाह बड़ा अच्छा है। उसी बीच में फोन बजता है, वो फोन लेकर फोन पर बात करने लगता है। तो बच्ची का मन थोड़ा खराब हो जाता है कि पापा को फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरी मेरी बात नहीं सुनी। तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियां हैं, और इसमें खास बात यह है संजीव जी कि आप इस किताब को कहीं से भी खोल कर पढ़ सकते हैं। इसमें 25 चैप्टर्स हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं। एक कहानी मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में सुनाई थी, वो भी इसी में से थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं लिख सका। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इस तरह की कहानी लिखने का, छोटी छोटी कहानियां लिखी, फिर उसे कंपाइल किया, कंपाइल करके फिर आज ये है कि अभी 7 तारीख को इसका पब्लिकेशन हुआ है। और ये किंडल पर भी अवेलेबल है और पेपरबैक भी है। तो ये अनोखी कहानी है क्योंकि ये मृत्यु से जन्म तक की है। मृत्यु होती है और जब जन्म होता है तो कहानी खत्म हो जाती है।
0: वेरी नाइस। तो ये अगर पढ़नी हो तो अमेजोन किंडल पे ले सकते हैं, और अगर पेपरबैक कॉपी किसी को चाहिए तो प्रदीप जी
1: वो भी वहाँ अमेजन पर अवेलेबल है।
0: अच्छा, अमेजन पे
1: जी। کینڈل کی بات بتا دوں کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر میرے پاس کینڈل نہیں ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا اس کا ایپ ہے
0: جی
1: ایپ آپ فون پر ڈاؤن لوڈ کریے اپنے ٹیبلٹ پر کریے اور وہیں وہیں پر آپ ڈرون بیک لکھیں گے تو یہ ہماری کہانی آ جائے گی ایک بات اور میں بتا دوں ڈرون بیک اس میں کیا ہے کہ جو ہمارا پنرجنم ہوتا ہے یہ ہمارا آٹومیٹک سسٹم ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی چوائس ہے اسی لیے اسے ڈرون بیک کا نام دیا گیا ہے جس سے کہ یہ ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پر ری برتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی ری برتھ ہی ہوتی ہے یہ ان کے کنیکشنز کے دوارا ہوتی ہے اور اس میں ایک جو کہانی ہے وہ پورا کہانی کے پورے کتاب میں چلتی ہے اس کی اپنے بھائی کے ساتھ بچپن میں کیسا تھا جوانی میں کیا ہوا پھر ماں کی مرتی ہوئی تو فیونرل میں کیا ہوا تو اس طرح کی باتیں ہیں
0: جی
1: اور آپ کیا پوچھنا چاہیں گے
0: اور دوسرا جو ایک بات اور آپ نے میں نے ابھی پڑھا کہ یہ اس کا جو بھی پروسیڈ ہے آپ سب ڈونیٹ کر رہے ہیں
1: بالکل بالکل یہ سارا ایکل ودیالے کے لیے جائے گی ساری پروسیڈز ایکل ودیالے جو بھی
0: تو شروتاؤں جو ہے ہمارے لوکل چھپے رستم پردیپ جی کی پستک جو ہے آپ ضرور خریدیے اور اس کے بارے میں اگلے کاریکرم میں پردیپ جی اور ڈیٹیل میں بتائیں گے بٹ مجھے لگتا ہے تب تک اگر آپ لوگ خرید کے پڑھ لیں تو اس دن پھر آپ سارے پرشن بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں
1: کیوں پردیپ جی بالکل بالکل بالکل اور اس کے 25 چیپٹرس ہیں
0: جی
1: اور 3 سیکشنز میں ہے کہ مرتی ہوتی ہے پھر اویکننگ ہوتی ہے پھر ہی ریٹرنز ٹو لائف اگین تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بتایا جائے گا
0: بالکل
2: تو بڑا ہی روچک ٹاپک ہے جو آپ نے لکھا ہے تو ہمارے شروتاؤں کے لیے ایک بار نام اور بتا دیجیے اس کتاب کا
1: اس کا ڈرون بیک DRAWNBACK ڈرون بیک
2: تو اس نام سے اگر سرچ کرے تو پھر وہ آ جائے گا
0: جی
1: بالکل بالکل آ جائے میں اس کے ڈیٹیلز اپنے اس پر واٹس ایپ پر پھر سے ڈال دیتا ہوں
0: ضرور لنک ڈال دیجیے تاکہ سب کو آسانی ہو جائے
1: بالکل
0: دھنیواد پردیپ جی اور مزہ آ گیا یہ سن کے کہ آپ کی کتاب آپ نے لکھی اور اتنے ڈفرینٹ ٹاپک پہ لکھی جو عام لوگ ادھر جو ہے سوچنے کی بھی نہیں کوشش کرتے ہیں
1: کوشش یہی رہی ہے کہ تھوڑی سی الگ ہونی چاہیے ٹھیک
0: دھنیواد
1: تھینک یو سنجیو جی
0: नमस्कार
3: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं श्री ओम के में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट साथ ही स्पेशल सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल हम 24/7 असिस्टेड लिविंग रजिस्टर्ड नर्सिंग रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं हम माई एज केयर NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं श्री ओम केयर जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au धन्यवाद
0: तो श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर का संदेश तो अजय और बताओ
2: श्रोताओं को एक बार और याद दिला दे कि आज हमारी एक पहेली है
0: हाँ
2: जिसके विजेता को 2 टिकट मिलेंगे नाटक दशोरंग के जो नोएडा में हो रहा है सिडनी में 26 सितंबर को और पहली है कि जो नाटक की संस्था है विविधा आर्ट्स वो कितने साल से सक्रिय है सिडनी में और अपनी कौन सी एनिवर्सरी मना रही है तो था आपके।
0: चलिए तो श्रोताओं जरूर उत्तर दीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और जो सही उत्तर होंगे उनमें से हम एक विजेता को चुनेंगे। तो श्रोताओं एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर गीत हुआ था, आइए सुनते हैं।

0: तो श्रोताओं हमारे स्टूडियो में है अचिन जैन जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो अचिन, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है अगले कुछ सालों में ये किस दिशा में जाने वाली है? तो कुछ मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी, सोलार का जो अपटेक होगा वो ज़्यादा होगा?
1: जी, तो एफिशिएंसी तो आई थिंक अब काफ़ी सैचुरेट हो चुकी है टेक्नोलॉजी, तो एफिशिएंसी में गेंस इतना नहीं मुझे लगता होगा, पर वो इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि कॉस्ट अब काफ़ी चीप हो गई है। तो अब इस समय ज़्यादातर जो आपको प्रोग्रेस दिखेगी वो यही है कि पेनिट्रेशन और बढ़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है और खासकर बैटरी के साथ कंबाइन होकर हम बात कर रहे थे इससे पहले, जो रिबेट्स इस समय चल रही हैं, तो इस वजह से सोलर बैटरी सिस्टम्स बहुत तेज़ी से लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। पिछले एक साल में जब से स्कीम अनाउंस हुई है 500,000 बैटरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया।
0: कैपिटल थोड़ा सा लगता है शुरू में,
1: कैपिटल शुरू में,
0: पर मेरे ख्याल से वो रिकवर हो जाता है।
1: जी,
0: खासतौर पर गवर्नमेंट रिबेट के साथ में।
1: हाँ, अगर आप रिबेट के साथ में ले रहे हैं तो आपका 6-7 साल में ये रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी सिर्फ जो ऑनगोइंग मेंटेनेंस की थोड़ी बहुत कॉस्ट है वो आती है, बट अदरवाइज जितनी आपकी सेविंग्स हैं बिजली के बिल पे वो सारी इससे रिकवर हो जाएंगी।
0: नहीं, अगर व्यापक रूप से देखें तो जो हम ज़्यादातर हमने जो पावर जनरेशन के लिए कोल पे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे मेजॉरिटी दो चीज़ें हैं
1: जी।
0: तो पर जो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अभी धीरे धीरे मतलब उनका बढ़ रहा है ना, प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो उसमें सोलर जो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। विंड का है थोड़ा सा या उतना नहीं है?
1: सोलर और विंड दोनों, इनफैक्ट विंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खासकर ऑस्ट्रेलिया के लिए और दुनिया भर में, क्योंकि सोलर तो सिर्फ दिन में ही प्रोड्यूस करता है ना बिजली, जब रात के समय विंड बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर सर्दियों में जब धूप कम घंटों के लिए आती है या जब बरसात हो रही है, बादल हैं, सनलाइट इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उस समय भी विंड की बहुत ज़रूरत है।
0: तो थोड़ा सा साइंस फिक्शन की तरफ, अभी जो साइंस फिक्शन लगता है हो सकता है कल के दिन रियलिटी हो जाए। तो लोग कहते हैं कि जैसे अभी हमने ईवी पे बात नहीं करी है
1: जी, जी।
0: तो जैसे कार हैं, कार का बड़ा सरफेस होता है
1: जी,
0: तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी निकल सकती है कि जो कार चल रही है सूरज में उस एनर्जी को कैप्चर करे और थोड़ा, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा बहुत एनर्जी उससे आ सके, तो पैनल हैं कार पे ही लग जाएं?
1: जी जी, इस तरह की कॉन्सेप्ट कार्स तो लोग डिज़ाइन करते हैं, बट अभी तक कोई मार्केट में से प्रोडक्ट नहीं आया है, क्योंकि सरफेस एरिया जो कार के ऊपर है वो बहुत थोड़ा है। तो हाँ, जैसे आपने कहा कि थोड़ी सी उससे बिजली प्रोड्यूस हो सकती है, बट आपकी जो कार की बैटरी का साइज़ है उसको चार्ज करने के लिए बहुत समय लगेगा, अगर सिर्फ हम कार के ऊपर एक सोलर पैनल लगाएं, अनलेस की कार ऐसी है जो पूरे दिन धूप में खड़ी है, चार्ज हो रही है।
0: बात करते हैं ईवी के बारे में।

0: खासकर ये तेल के प्राइस बढ़ने की दाम बढ़ने की वजह से ईवी की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी है ऑस्ट्रेलिया में, और पहली बार अभी हुआ है पिछले महीने कि ईवी की सेल्स ने पेट्रोल और डीजल कार की सेल को एक्सीड करा है, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारी देश के लिए।
1: तो अभी तो कार चल रही है, अभी बसें भी चल रही हैं, है ना? तो और आप बताइए, जैसे मतलब हैवी व्हीकल्स हैं वो भी ईवी से चल पाती हैं?
0: ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे उठाई है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खासकर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो हैवी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग सेक्टर सबसे बड़ा है ना, अगर यहाँ का एक्सपोर्ट देखा जाए तो हैवी फ्रेट के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक्स, ऑस्ट्रेलिया को अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा डीजल इम्पोर्ट करता है इस समय सिर्फ माइनिंग के लिए, और अगर उस उन सब को हम इलेक्ट्रिक कर पाएँ, सारी जो ट्रक्स हैं और जो ट्रेन्स हैं, जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, ये सब अगर इलेक्ट्रिक हो तो इतना मैसिव हम लोगों का डीजल की सेविंग्स होगी। और ये टेक्नोलॉजी भी है ऑलरेडी चाइना में, ये सब इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, और यहाँ पे हम लोगों को डीजल के लिए सरकार फिलहाल तो रिबेट देती है, डीजल फ्यूल रिबेट माइनिंग के लिए, जिस वजह से
2: उसमें भी काफ़ी पैसा बचेगा,
1: तो कॉस्ट सेविंग भी है और दूसरा पोल्यूशन पे भी है उसका।
0: हाँ वो तो है, अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात भी कर रहे थे, CO2 एमिशन भी कम।
2: इंडिया में भी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जो इतना काम हुआ है उसका भी एक, जैसे आज मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था कि एक ट्रेन से जो सामान आया दैट वॉज इक्विवेलेंट 250 ट्रक। तो आप सोचो दिल्ली से 250 ट्रक बड़ौदा तक आते तो कितना पेट्रोल डीजल खर्चा होता, कितना पोल्यूशन होता, तो वो एक ट्रेन उतना सामान लेके आई है।
1: थोड़ा सा टेक्निकल इशू पे जाता हूँ
0: जी।
1: जो हम सोलर पावर कहते हैं
0: जी,
1: तो जो सन से काफ़ी रेज आती हैं, जो हम देखते हैं वो विजिबल रेज होती हैं
0: जी,
1: है ना, विप ग्योर जो कहते हैं ना, 293 तक होता है, 320 तक। तो सोलर पावर जो हम किसको कैप्चर करते हैं, हालांकि हम विजिबल कैप्चर करते हैं या अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड है उसको भी कैप्चर करते हैं?
0: इंफ्रारेड भी हम कैप्चर करते हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि सिलिकन जितना हम देख पाते हैं सिलिकन, उससे भी जो लंबी वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है।
1: अच्छा हाँ। तो दुनिया में सब जगह शायद समान रूप से नहीं होती है सौर, मतलब सनलाइट
0: जी जी, सोलर रेडिएशन जो है।
1: तो कुछ देश ऐसे हैं जिनको उनका भरपूर लाभ नहीं मिल पाता होगा
0: जी। हाँ जी, जैसे ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट है कि यहाँ पे हमारे पास सोलर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, सोलर और विंड दोनों ही, यहाँ पे बहुत हवा बहुत अच्छी चलती है, सोलर की जो हम जिसे बोलेंगे इंटेंसिटी बहुत हाई है, इंडिया में भी बहुत हाई है, अफ्रीका में हाई है, बट और जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं यूरोप में वहाँ पे, या कैनेडा में वहाँ पे इतना नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया की जो सदर्न स्टेट्स हैं तस्मानिया में वहाँ पे कम है। अच्छा। इसलिए तस्मानिया में आपको सोलर कम मिलेगा।
1: अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ना, जैसे हम बात कर रहे थे कार्स की और ट्रक्स वगैरह की, अभी बैटरी की एफिशिएंसी और साइज़ इतना हो पाया कि हम जो प्लेन उड़ा पाएँ सोलर से? सोलर
0: प्लेन एक अलग चैलेंज है, क्योंकि प्लेन के लिए
2: बैटरी के प्लेन आ गए हैं, बट सोलर के प्लेन तो आप
1: नहीं, नहीं मतलब उसको कैप्चर करें बैटरी से।
2: हाँ,
1: और फिर उसको मतलब उतना रेंज हो और उतना
2: 300-400 किलोमीटर का या कुछ ऐसा, अभी एक अमेरिकन प्लेन लॉन्च हुआ।
0: लाइट प्लेन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए या फ्रेट के लिए
2: तो अभी मुश्किल
0: है उस तरह की, क्योंकि बैटरी का वेट बहुत ज़्यादा है, और डेंसिटी बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी है अभी भी उतनी नहीं है डेंस जितना जेट फ्यूल की होती है।
2: चलो एक हमारे स्पॉन्सर का संदेश सुनते हैं।
3: लव ऑथेंटिक करीज बट डोंट हैव आवर्स टू स्पेंड इन द किचन? इंट्रोड्यूसिंग करी मास्टर्स, द कंप्लीट करी मिक्स दैट्स रेडी टू कुक एंड पैक्ड विद ऑथेंटिक फ्लेवर। No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
2: श्रोताओं, ये था हमारा स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। चलिए एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश.
2: कुटुंब संस्था एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रही है, उसका नाम है उत्सव. तो ये हो रहा है 20 सितंबर को शाम 5 से 8 बजे. उसका स्थान है हार्वे लो पवेलियन, कासिल हिल, चोग्राउंड. बता दो, उत्सव नाम से ये कल्चरल फेस्टिवल है जो 20 सितंबर रविवार पड़ता है, 5 से 8 बजे तक है. और इसके टिकट हैं $20 पर हेड, जिसमें कि खाना शामिल है. अगर अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्री राजगढ़ जी को, जिनका नंबर है 0411766170.
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको एसपी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा गाए हुए सब गीत सुना रहे हूं. एसपीबी यानी एसपी बाला सुब्रमण्यम सिर्फ एक गायक नहीं थे, बल्कि वे संगीत की एक पूरी यूनिवर्सिटी थे. उन्होंने सलमान खान, कमल हासन और रजनीकांत जैसे दिग्गज अभिनेताओं को अपनी आवाज़ से पर्दे पर जीवंत कर दिया. हम आपके हैं कौन के गानों ने तो हर शादी और जश्न की शान बढ़ा दी थी. उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. उनकी गायकी में जो अपनापन और ऊर्जा थी, वो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है. आइए सुनते हैं ये गाना.

0: तो अचिन जी आपसे थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछना है सोलर के बारे में। मान लीजिए कि कोई हाउस होल्ड है, कोई गए, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सोलर लगाते हैं अब। तो फिर कई बार पता नहीं होता कि जे मतलब किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने पैनल लगेंगे और कौन से पैनल चूज़ करें, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, और क्या कैपेसिटी देखें। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
1: जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे सोलर इंस्टॉलर्स हैं
0: जी
1: जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कोई अक्रेडिटेड इंस्टॉलर लें जिसके अच्छे रिव्यूज़ हों। वो आके आपके सिस्टम को, आपके घर को पूरा असेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपकी रूफ़ है, कितनी वहाँ पे सनलाइट आ रही है, कितना आप जनरेट कर सकते हो, आपके यूसेज देखेंगे कि कितना आप महीने में बिजली इस्तेमाल करते हो, तो आपके घर के लिए कितना साइज़ का पैनल सफिशेंट रहेगा। ऑनलाइन भी आप खुद से भी अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ये एनालिसिस। सनस्पॉट करके एक वेबसाइट है, UNSW ने बनाई है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से सपोर्टेड। सनस्पॉट पे आप जाएंगे तो अपना एड्रेस डालेंगे तो उसमें भी आप पूरा चेक कर सकते हैं कि आपके लोकेशन पे कितनी सनलाइट आ रही है और आपका यूज, आपका बिजली का बिल
0: ये
1: उसमें
0: तो बहुत
1: अपलोड
0: अच्छी
1: कर,
0: जानकारी दी आपने।
2: ये तो बहुत ही
1: उसमें अपना बिजली का बिल अपलोड करिए, वो आपको बता देगा कि आपके यूसेज के लिए कितना सिस्टम सही रहेगा आपके लिए।
2: अच्छा, वेरी
1: ये
2: गुड।
1: फ्री टूल है सनस्पॉट।
0: तो अलग अलग पैनल की क्वालिटी भी अलग होती है, मुझे याद है। एक साथ पैनल होते हैं, दूसरा वो कैपेसिटर होता है, क्या होता है साथ में, इन्वर्टर।
1: वो पूरा सिस्टम का
0: हाँ
1: पार्ट है। तो
0: हाँ
1: सिर्फ सिस्टम में सिर्फ पैनल नहीं होता, पैनल के साथ आपका इन्वर्टर भी आएगा।
0: जी
1: और अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी का
0: नहीं,
1: सिस्टम
0: तो
1: पूरा अलग से
0: मुझे
1: होता
0: याद है
1: है।
0: जब हमने लगवाया था तो कभी लगाने वाले पूछता है कौन सा चाहिए।
1: हाँ, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं।
0: हाँ
1: तो सनग्रो है जैसे, बहुत बड़ी
0: हाँ
1: ब्रांड है,
0: सनग्रो है।
1: गुडवी
0: हाँ
1: है, इस तरीके से काफ़ी
0: कुछ,
1: सारी ब्रांड्स हैं। हाँ,
0: हाँ कुछ मतलब वो भी होते, जर्मन होते हैं, उनके
1: जर्मन
0: भी
1: भी
0: तो आ
1: हैं।
0: जाते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ
0: हाँ
1: एक और एक फ्रोनियस का इन्वर्टर बहुत पॉपुलर है। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी मेजर ब्रांड्स हैं, मतलब बहुत से। मुझे
0: ब्रांड।
1: ज़्यादा
0: तो
1: ब्रांड्स का नहीं
0: अगर किसी
1: आइडिया।
0: के पास जानकारी नहीं है तो वो कैसे डिसाइड करें कि हम जो कौन सा लगाएं इन्वर्टर।
1: ऑनलाइन सोलर कोड्स है, उस पर आप जाके देख सकते हैं।
0: अच्छा
1: सोलर
0: हाँ
1: कोड्स पे
0: हाँ
1: प्राइस कंपैरिजन आप कर
0: हाँ
1: सकते हैं, तो वो आपको
0: अच्छा
1: सारे अलग अलग ब्रांड्स के और प्रोवाइडर्स के
0: अच्छा
1: कंपैरिजन कोड्स ही जनरेट करके दे
0: अच्छा
1: देगा।
0: अब बैटरी का प्रचलन हो गया है काफ़ी,
1: जी
0: तो उस पर रिबेट भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ
1: जी
0: से।
1: जी
0: तो बैटरी का हम क्या सोचते हैं, मतलब कैपेसिटी अलग डिसाइड करती है हम कौन सी कैपेसिटी के लगवाएं आपके घर के हिसाब से।
1: हाँ, दोनों चीज़ें। अगेन, सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी यूसेज कितनी है, कि आप किस तरीके से बैटरी को यूज़ करना चाहते हैं, कितना बड़ा आपका सोलर सिस्टम है, उससे भी डिटरमाइन होगा कि आपको बैटरी का सिस्टम कितना बड़ा चाहिए। और अगेन, कैपिटल कॉस्ट, राइट, कितना आप स्पेंड कर सकते हैं,
0: अच्छा
1: तो सारे फैक्टर्स हैं।
0: आप जो है वो न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं
1: नहीं, न्यू साउथ
0: इतने।
1: वेल्स गवर्नमेंट नहीं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया, मतलब ईस्ट कोस्ट के लिए काम करती है,
0: अच्छा
1: सारे स्टेट्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया,
0: अच्छा
1: विक्टोरिया, न्यू साउथ
0: तो
1: वेल्स। या
0: आप आजकल क्या कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं आपके, आपका बताइए कुछ कुछ जो आप जो रोज़मर्रा का आपका काम है।
1: जी, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस समय, लाइक 40-50 करीब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। डाटा सेंटर्स पे काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं
0: हाँ
1: क्योंकि इस समय डाटा सेंटर्स बहुत बड़ा लोड आ
2: ज़्यादा,
1: रहा है,
2: हाँ लोड
1: ग्रिड
2: जी।
1: पे आ रहा है। ईवीज़ में काम कर रहे हैं, ईवी चार्जिंग खास करके बहुत बड़ा टॉपिक है इस समय, क्योंकि ईवीज़ के लिए बहुत बड़ा बैरियर है कि उन्हें चार्ज का करें। जिन लोगों के पास अपना खुद का गैराज है वहाँ तो आप चार्ज इंस्टॉल कर सकते हो, और बहुत लोग अपार्टमेंट्स में हैं,
2: हाँ उनके
1: अपार्टमेंट्स में कहाँ पर चार्ज करें। तो कर्ब साइड ईवी चार्जिंग पे आजकल काम हो रहा है कि रोड साइड में चार्जर्स इंस्टॉल करें, पर उसमें चैलेंज है कि उसे चार्जर कौन ओन करेगा। जो आपका नेटवर्क कंपनी, अगर वो ओन करे तो क्या वो कॉम्पिटिटिव है, नहीं है, या फिर प्राइवेट कंपनीज को आप दें। तो ये चीज़, ये सब सवाल हैं जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपार्टमेंट्स के लिए बालकनी सोलर पर भी काम हो रहा है।
2: अच्छा
1: हाँ,
2: वाह
1: क्योंकि इतने लोग सिडनी में खास करके, अब जो ज़्यादातर जो नई हाउसिंग बन रही है अपार्टमेंट्स बन रही है,
2: बन रहे हैं जी।
1: अब यूरोप में अब बालकनी सोलर बहुत पॉपुलर है, खासकर जर्मनी में 1 मिलियन से ऊपर अपार्टमेंट्स में बालकनी में सोलर लगे हुए, जैसे बालकनी की आप जो रेलिंग से सोलर पैनल टांग सकते हो।
0: अच्छा वाह
1: ऑस्ट्रेलिया में अभी तक अलाउड नहीं है,
0: अच्छा
1: यूके में भी हाल फिलहाल में अलाउ हुआ है, तो बहुत प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया पे कि वो भी अलाउ करें।
2: चलो अचिन, थैंक यू, आप आए कार्यक्रम में और आपने काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हम सुनने वालों को, और आगे भी आप ऐसे ही कभी कभी आके हम लोग को क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है आके बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए
0: हम
1: बहुत मजा आया
0: दर्पण में ज्ञान बांटते भी हैं और ज्ञान के इच्छुक भी हैं कि जो
2: बिल्कुल
0: हमें हमें ज्ञान दे
2: तो एक स्पॉन्सर का संदेश सुन लें
3: But don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
2: श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत

श्रोताओं आप सबके मैसेज आए, बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मैसेज भिजवा करिए व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो जिससे हमारा हौसला बढ़े, हमारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेके आए। यतिंद्र गुप्ता जी कहते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत बहुत अच्छी रही। प्रदीप जी लिखते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ संजीव जी की बुलंद आवाज के साथ हुआ और उनको शिक्षा प्रद विचार बहुत पसंद आया और भजन भी अच्छा लगा उनको। और प्रीत चोपड़ा जी लिखते हैं कि ये बहुत सुंदर भजन था हनुमान अंश फिल्म से। राज गर्ग जी लिखते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत बहुत अच्छी रही और तैपन ने देखो धन्यवाद दिया है। शैलिजा जी लिखती हैं अचिन जी का ज्ञानवर्धक वार्ता महत्वपूर्ण है, भारत के सौर्य ऊर्जा काफ़ी विकसित है, अपने विचार इस विषय से मैं साधक कीजिए, तो छोटी कर दी उन्होंने। और उसके बाद में प्रदीप जी लिखते हैं ज्योत्सना जी के जो साक्षात्कार था उनको उन्होंने बधाई दी अपने कार्यक्रम के लिए और सफलता दी है। शैलजा जी ने भी सफलता दी है और जो पहली हम रन कर रहे हैं उसके कई सारे हमारे पास उत्तर आए हैं। हम कार्यक्रम के अंत में एक विजेता की घोषणा करेंगे। और यतिंद्र जी ने फिर से लिखा है, उनको पाल सुब्रमण्यम जी के गाने बहुत अच्छे लिखे हैं और उनको काफ़ी मेमोरीज हैं उनके बारे में। और राजीव निगम जी ने लिखा है कि उनको पाल सुब्रमण्यम जी के गानों का जो हमने सुनाया वो सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा। और उनको सोलर पैनल के बारे में जो जानकारी दी हमने वो भी उसको ने सराहना की है और बैटरी के बारे में भी बात की। और लीला तिलवानी ही एक हमारी रेगुलर लिसनर हैं, उनकी हमेशा प्रतिक्रिया रहती है कार्यक्रम के बारे में, उनको भी गीत सारे बहुत अच्छे लगे।

0: दिल की किताब के बारे में भी लोगों ने कमेंट किया है उनको अच्छी लगी और शायद किताब को खरीदेंगे और पढ़ेंगे उस बात और जसप्रीत चोपड़ा जी ने कहा कि पाल सुब्रमण्यम अपने उनके टाइम के बड़े लेजेंड रहे हैं उनके गाने बड़े बहुत चर्चित रहे थे राम जी ने लिखा है कि बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था सोलह के बारे में और चैटी के बारे में भी और काफ़ी टाइम भी था यतिंदर जी हैं उनका एक सवाल है कि जो डेटा सेंटर है उसमें काफ़ी पावर की खपत होती है तो उसमें सोलर का कितना रोल हो सकता है
1: उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ही गाइडलाइंस अभी निकाली हैं कि जो भी डेटा सेंटर बनेंगे उनको अपनी खुद की रिन्यूएबल एनर्जी लानी पड़ेगी ताकि जो ऑलरेडी जो ग्रिड में जनरेट हो रही है वो उस पर स्ट्रेन ना डालें जिससे कि हमारे बिजली के बिल ना बढ़े
0: तो और शैलजा जी ने पूछा है कि सोलर एनर्जी उन्हीं घर में पॉसिबल है जहाँ पे ओपन रूफ होती है जैसे आपने कहा कि बालकनी में भी आ रही है तो वो जानना चाहती थी उसके बारे में और ये है हमारे कुछ श्रोताओं के कुछ विचार
2: तो चलिए तो श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद और जैसा कि मैंने आप लोग से कई बार भी बताता चल रहा हूँ कि आज हम एसपी बाला सुब्रमण्यम जी के ही सारे गीत सुनाने जा रहे हैं चलिए सुनते हैं एक और उनका गीत

0: सो अजय आज की पहली किसने जीती है
1: समय आता है पहली के जो विजेता है उनकी घोषणा करने की आज जे जीवन का पूरा नाम नहीं आ रहा है उनको दो टिकट मिलते हैं नाटक दशोरंग के और जो उत्सव कार्यक्रम है तो राजगर्ग जी हैं
0: उस जी
1: संचालक उन्होंने भी जो चार टिकट दिए हैं उसके लिए
0: अरे वाह
1: के लिए
0: जी
1: उनके जो विजेता हैं एक हैं मंजू मल्होत्रा जी
0: जी
1: उसके दो टिकट मिलते हैं और एक मैम आ रहा है पूरा नाम नहीं आ रहा है उनको दो टिकट मिले हैं जो हमने ड्रॉ किया है
0: तो आप उनका नंबर नंबर बता दीजिए
1: ठीक है जी हैं हम उनको संपर्क करेंगे और उनको टिकट पहुँच जाएंगे
0: तो श्रोताओं एक आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि ये जो टिकट हमें मिलती है हम भी किसी स्पॉन्सर से लेते हैं तो जैसे हमें मिलती है हम बाकी लोगों को बांट देते हैं कई बार उसमें गड़बड़ हो जाती है
1: पर हम तो
0: कोशिश करते हैं
1: जी जो हमारे स्पॉन्सर हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं हाँ, उनको
0: आप भी सपोर्ट
1: और कार्यक्रम उसमें भाग लें आप
0: तो श्रोताओं अब इस सप्ताह के इस कार्यक्रम का भी समय समाप्त होने जा रहा है आज आपके साथ स्टूडियो में थे अजय गुप्ता और संजीव शर्मा और हमारे साथ एक नौजवान जी थैंक यू वेरी मच चिंत खूब अच्छी आज आपने जानकारी दी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और हम लोग को आके चुप सब लेटेस्ट से अवगत कराते रहिए तो चलिए चलते चलते आपके लिए एक और खूबसूरत सा गीत छोड़ के जा रहे हैं और अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी धन्यवाद